वायनेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट रु 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सबै कनेक्टेड।

0: అందం రెడ్డి మీరు ఎవరెస్ట్.
1: UAA प्राप्त बानेश्वर बहुमुखी कैंपस शांति नगर बानेश्वर काठमांडू को नया भर्ना संबंधी सूचना.
2: लामो शैक्षिक इतिहास भएको त्रिवी द्वारा संचालित बोर्ड परीक्षा में राम्रो रिजल्ट ल्याउन सफल QAA प्राप्त इस कैंपस में बिहानी समय में BBS BA र BEd प्रथम वर्ष में शैक्षिक सत्र 2083-84 का लागि भर्ना खुल्यो.
1: साथ ही विद्यालय व्यवस्थापन समिति को स्वीकृति में बिहान समय में कक्षा 11 में साइंस मैनेजमेंट ह्यूमैनिटीज कंप्यूटर साइंस र एजुकेशन में धमाधम भर्ना भइरहेको छ.
2: कैंपस लोकेशन काठमांडू को तीनकुने गैरीगाउँ पेट्रोल पम्पबाट 200 मिटर भित्र बागमती पुल सँगै.
1: सम्पर्क बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पस शान्तिनगर काठमाडौँ.
3: सम्पर्क फोन नम्बर 01-46-20-310.
2: मोबाइल नम्बर 98514-0141-98 र 98412-55957.
4: सबैभन्दा बढी कस्तो माया लाग्छ
5: स्वर्गद्वारी चलचित्र मन्दिर घोराई दाङमा भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ. नेपाली कथानक चलचित्र पार्वती.
6: मेरो छोरीलाई राम्रो स्कुलमा पढाउ.
7: यो हो रेडियो मध्य पश्चिम FM 91.4 मेगाहर्ज.

0: हाँचिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, ढाड कम्मर दुख्ने, हाड जोडिङ सम्बन्धी अपरेशन सेवा,
1: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू,
2: वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखेलद्वारा बिरामी चेक जाँच सेवा,
3: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
4: नसा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्माद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
1: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारीद्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
4: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसी द्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
5: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्य द्वारा भिडियो एक्सरे सेवा,
1: साथै इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, इको, कल्पोस्कोपी, सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू।
6: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली, सडक विभाग ओह्रालो, घोराई, जाँच। फोन नम्बर 082563218।